उसी कहा कि तिन महसूस हो के या कान नुसीता है कि मैं कुन तो कर तकान तरी अपनी पेन कौता मैतम नकोम के कौसी निमीन तान तीन तीन आपूंग मोरारे कि नकोम कोई ते समुरी के तकान तरी कई कौस नकोम ने पैंग कोई अतें तेरे रही तकान तरी कई कमाउस कमा तौर पो पो की तौतना के कें करवाई नको सिपा ते तौतना में यानी मेंगामी माइन में रोको निपेमी मकुरी के रोको नाम स्कूल बस गोई अतें तेरे रही तेंग आपूंग के ना तौर कि कौत मतम कुनम तो करना आइयो एपिरी पिरी तेताई।